नहीं, उस जमाने में बादशाहों को और हाकिमों को, गवर्नरों को सिर्फ अपने मसलहतों के तहत, अपनी हुकूमत के तहत जिंदान में डालना तो याद रहता था पकड़कर, लेकिन फिर ये कभी नहीं देखने जाते थे जिंदान में है कौन। मगर ये कि अलग से कोई सिफारिश ना लग जाए, अगर कोई सिफारिश होती थी, जैसे आप पता नहीं सुना होगा कि मिसल मुख्तार सकफी दो बार जिंदान से आजाद हुए। क्यों आजाद हुए? क्योंकि उनके बहरोई अब्दुल्ला

यूं थोड़ी नहीं होता था, ये तो 400 साल पहले ऐसा शुरू हुआ, जब सफी हुकूमत ईरान में कायम हुई, शिया हुकूमत जो पहले सब अहले सुन्नत हुकूमत थी, जब ईरान में सफी हुकूमत कायम हुई और हुकूमत के बाद बड़ी बड़ी मजलिसें, बड़े बड़े प्रोग्राम, हिंदुस्तान में तो बिल्कुल नहीं था। ये 250 साल पहले जब अवध में जो है, यानी और भी हुकूमतें पहले कायम हो चुकी थी लेकिन इस तरह मजलिसें नहीं थी, लेकिन अवध के नवाबों ने यह एहतमाम किया कि उन्होंने मजलिसों के लिए खास कर एहतमाम किया और उसके लिए ये इस पर दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह उनका उसका अज्र उन्हें दे जिन लोगों ने एहतमाम किया है। ये एहतमाम करते थे सुबह निकल के, मौसम कुछ भी हो, गर्मी हो, ठंडक हो, निकल के जाते थे, फलाने ताजिया रखा हुआ तो उनके दरवाजे पे, फलाने रखा है तो उनके दरवाजे पे, फलाने रखा है तो उनके दरवाजे पे। अब ये सब तारीख में लिखा हुआ है कि वहां पर उन्होंने 2 सिक्के रखे सोने के, वहां पे 3 सिक्के रखे, वहां पे इतने सिक्के रखे। ये मालूम है कि ये मसला सिक्कों को का नहीं है, लेकिन ये कि बादशाह आ रहा है, तो जब बादशाह आ रहा है तो हिंदू लोग भी जो है अपने यहाँ ताजिया रखने लगे, गैर मुसलमान लोग भी ताजिया रखने लगे, जो बहुत शिया नहीं थे अहले सुन्नत लोग भी ताजिया रखने लगे। ये एक एहतमाम किया, उसके पीछे उलमा बुजुर्गवार शामिल थे, सैयद गफरान आप रहमतुल्लाह अलैह, उनके बहुत ही अजीम फर्जंद सैयद हुसैन जो है, जो मुश्तहिद थे, फकीह थे उस जमाने में, जो नजफ की सबसे बड़ी किताब, जो आज भी सबसे बड़ी किताब है, वो किताब जब नजफ में लिखी गई तो वहां से भेजी गई यहां पर लखनऊ में कि आप इस पर एक निगाह करें और अपनी राय दें ताकि मैं सिलसिले को आगे बढ़ाऊं। कभी ऐसा हुआ करता था, लेकिन ये एहतमाम करते थे। फिर वो आप जाके देखें तरह हिंदुओं के अजा खाने, फलां के अजा खाने, ये उनका ताजिया, उनका ताजिया। ये सब मंजिलों से गुजरने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे मकाम पे हैं कि किसी भी बस्ती में चले जाएं, किसी भी शहर में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं जहां कोई शिया है भी नहीं, वहां भी हुसैन इब्ने अली के लिए एहतमाम हो रहा है, वहां भी कोई ताजिया उठा रहा है, कोई मजलिस कर रहा है, कोई अपने अंदाज से पढ़ रहा है। लेकिन ये सब का बुनियादी तरीन मकसद क्या है? बुनियादी तरीन मकसद यही है कि शैतनत की दुनिया में, यजीदों की दुनिया में, बातिल जालिमों की दुनिया में एक गिरोह ऐसा पलता रहे कि जो बातिल तरीके जिंदगी के मुकाबल में एक हक तरीके जिंदगी पेश करता रहे। जिंदगी, सोच, फिक्र, सच्चाई, ईमानदारी। अब मैं निगेटिव बातें नहीं कहना चाहता हूं और उससे परहेज करना चाहिए ज्यादा, लेकिन बुनियादी तौर पर अगर वैल्यूज के जरिए से, हुसैनी वैल्यूज, हुसैनी अकदार, अब उर्दू लफ्ज जो है अकदार ही है, बच्चे नहीं समझेंगे लेकिन 2-3 बार ये दोनों साथ साथ लफ्ज इस्तेमाल करते समझ ले। हमारे बुजुर्ग हैं, उनके पूरा शायद अशरा था या पूरी गुफ्तगु थी कि करबला की जंग इकतदार की जंग नहीं थी। हुकूमत ने बहुत कोशिश की कि उसे इकतदार की जंग मना दे कि बनी उमैया भी हुकूमत चाहते थे, बनी हाशिम के पास तो हुकूमत थी तो उनके पास चली गई तो वो वापस लेने लगे, पहले बनी हाशिम के पास थी तो बनी उमैया ने सारी कोशिश कर दी। उनकी सारी कोशिश ये रही तारीखों की, मौरखों की, कि इसे इकतदार की जंग मना दिया जाए, जैसे सारी दुनिया में होती है। इकतदार की जंग सारी दुनिया में होती है। फर्स्ट वर्ल्ड वार इख्तदार की जंग थी, सेकंड वर्ल्ड वार इख्तदार की जंग थी, 4-4 करोड़ लोगों को मार दिया गया, इख्तदार की जंग थी। और पूरी दुनिया में जो जंगें होती रही वो इख्तदार की जंगें होती रही। यहां हमारी जमीन पे कितनी जंगें हुई, चाहे मुसलमान ने की, चाहे मुगल ने की, चाहे इन्होंने की, चाहे उन्होंने की, सब इख्तदार की जंगें कर रहे थे, लेकिन करबला की जंग अकदार की जंग थी, वैल्यूज की जंग थी, फजीलतों की जंग थी, तरीके जिंदगी की जंग थी। फर्क क्या है? इख्तदार की जंग में इंसान को किसी ना किसी तरह अपने आप को बचाना है, क्योंकि बचेगा तभी इख्तदार होगा, बचेगा तभी हुकूमत होगी। लिहाजा जब बचने का खतरा होता है तो सारी जिल्लतों के साथ फरार करते हैं कि दोबारा फिर आएंगे, फिर लश्कर इकट्ठा करेंगे, फिर कोशिश करेंगे। जिल्लतों की कोई परवाह नहीं होती, इख्तदार की परवाह होती है। जिल्लत कोई माना नहीं रखती। जैसे हमारे मुल्क के बाज लोग हैं, उनके लिए जिल्लत कोई माना, पूरा मुल्क जलील हो जाए कोई मसला नहीं, हुकूमत हमारी होना चाहिए। तो जो इख्तदार की जंग लड़ रहे होते हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ हुकूमत चाहिए होती है। दुनिया में 99% जो जंगें होती हैं वो इख्तदार ही की जंग होती है, वो हुकूमत ही की जंग होती है, बड़े पैमाने पर हो या छोटे पैमाने पर हो। खुदा न खास्ता ये जंग बढ़ते बढ़ते

0: बात है अहमद, मुझसे कुछ काम था।
1: हाँ घर आ जाना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे।
0: ठीक है फिर नमाज के बाद मिलते हैं।
1: उस मलून के पीछे नमाज पढ़ोगे?
0: मैं मजबूर हूँ।
1: लेकिन मैं मजबूर नहीं हूँ।

0: तुम यहां क्या कर रहे हो? अपने घर वापस जा रहा हूं। नमाज को क्यों नहीं गए? गया तो था, तबीयत ठीक नहीं है, वापस जा रहा हूं। जाओ।
1: क्यों दरवाजा नहीं खोला?
2: तुम किससे बात कर रहे थे? निगहबान पूरे शहर में फैले हुए हैं, शायद उनका हाकिम मुआविया वासले जहन्नम हो गया है। वो नमाज के लिए भी नहीं आया।
3: फिर नमाज किसने पढ़ाई?
4: मरवान।
3: मरवान ने?
2: क्या खबर है?
3: कुछ नहीं मालूम, कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन शहर के हालात खराब हैं। कहीं ऐसा तो नहीं माविया का कत्ल हो गया और किसी को खबर ना हो और ये लोग हुकूमत पे काबिज हो जाएं?
4: मरवान, वो मुआविया की जगह आना चाहता है।
3: वो बहुत चालाक और धोखेबाज है। आज वो अकेला नमाज के लिए आया।
4: मैंने कहा नहीं था?
5: तो यजीद क्या, उसका क्या होगा?
3: यजीद? वो एक बेवकूफ और बेहुदा इंसान है। मुझे यकीन है मरवान उसको मरवा देगा।
4: खुदा की कसम, अगर हारिस इजाजत दे तो कल ही मैं मरवान को उसके मुहाफिजों के दरमियान एक ही जरबत से हलाक कर डालूंगा।
6: जल्दबाजी ना करो बेटा, हम खुद भी इजाजत नहीं रखते। हम हसन इब्न अली के ताबे हैं, वो खुद मौलाए कायनात के फरमान का हुक्म जारी करेंगे। ये समझ लो कि हम लोगों की मर्जी नहीं चलेगी। रशीद को देखा?
3: हाँ, आपका पैगाम पहुंचा दिया। वो नमाज के बाद आएंगे, इससे पहले आने की जरूरत नहीं थी।
6: हक उसके साथ है, मुआविया का दरबान जो हुआ, नमाज पढ़ ली?
3: नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा था। खुदा उस पर लानत करे, अरे मेरी नमाज कजा हो जाएगी।

0: ये झूठ बोल रहा है। नकासिद है और नकूफे से आ रहा है। यही महल का आदमी है। आज सुबह मैंने उसे महल में देखा है।
1: लगाम दे अपनी जबान को। दुश्मनों के साथ कैसे पेश आऊं और कातिलों के खंजर से बचना जानता हूं, मगर तेरी बेवकूफी का इलाज मेरे पास नहीं है। कुछ तो शैतनत सीख और अपने धुन को हुकूमत में लगा। तमन्ना है कि तुझे तख्त हुकूमत पर बिठा दूं।
2: ऐ दमिश्क शाम के लोगों, आज तुम्हें वही इफ्तिखार मिलने वाला है जो रसूलुल्लाह के जान निसारों और सहाबियों को मिला। तुम में से जो भी आज हिमायत और नुसरत के लिए अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाएगा, उसे वही सवाब मिलेगा जो रसूलुल्लाह के अस्हाब को।
1: खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। चल आ मेरे साथ।
0: मुझे यकीन है ये आदमी कूफे से नहीं आया।
1: कूफा तेरे सर पे गिर पड़े।
0: मैंने उसे यहीं देखा है।
1: देखा होगा, ये सब लोगों को दिखाना था। अली हमारा दुश्मन है या नहीं?
0: तो हमले का खतरा तो नहीं है ना?
1: हमला कहना है, हमेशा हमले की बात करना है। अहमक, आखिर कुछ तो मुझसे सीख।

0: वसीयत फरमाई है कि शब को गुसल दे और रात की तारीकी में दफन करें, अकेले लोगों के बगैर।
1: शायद वो हजार रंग वाले चेहरे अपने जनाजे के अतराफ नहीं चाहते थे।
0: अगर इराकियों में कोई हमदर्द होता तो अपने मुंह को कुएं में डाल के बातें न करते।
1: इस बुजदिल जमात से किस कदर बेजार थे।
0: अल्लाह के चाहने वाले अपने दोस्त की दीदार को इस तरह जाते हैं जिस तरह के फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा।
2: Ha ha ha ha ha!

0: जाओ जल्दी से उसका पीछा करो, जाते क्यों नहीं? रास्ते बंद कर दो, इसे जाने मत दो, ये मुझे जिंदा चाहिए।
1: आओ इधर आओ, इधर आओ, मैं कहता हूँ इधर आओ। डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। लाओ मैं तुम्हारे हाथ खोल दूँ। आओ आओ मेरे साथ आओ, नीचे आओ, डरो मत, आओ मेरे साथ, आओ जल्दी आओ।

0: आओ चाकू खरीद लो, तेज चाकू। आओ मेरे पास तेज चाकू है, खरीद लो। आओ, आपको चाकू नहीं चाहिए?
1: क्या भाव दे रहे हो? कहाँ से टूटा है? इन पैसों में इससे अच्छा क्या मिलेगा? जाओ ले जाओ।
2: दरवाजा खोलो, मैं हूं। चलो तुम अंदर चलो।
3: अहमद, क्या बात है?
2: इसकी जान खतरे में।
3: कौन उसे मारना चाहता है?
2: नहीं मालूम, शायद माफिया के निगेबान थे, मगर ये खूब लड़ा, ये हंगामा मच गया। इसने पूरे बाजार को तहस नहस कर दिया। काश आप वहां होते। इसकी तलवार ने जमीन और आसमान को एक कर दिया। अना जाने माफिया के कितने फौजियों को इसने धूल चटा दी।
3: और तुम उसे यहां ले आए?
4: आप लोग डर क्यों रहे हैं? मैं ज्यादा यहां नहीं रहूंगा। अगर मुझे थोड़ा सा पानी पिला दें तो मैं पानी पी के चला जाऊं।
1: क्यों, क्या तुम्हारा रोजा नहीं है
3: मोहम्मद?

0: किताब नहीं रखते। एक हमला करके काम तमाम कर देंगे और अली को हमेशा के लिए अपने दरमियान से हटा देंगे।
1: सुनो, कूफे से कासिद आया है, अली को रात को गुस्ल दिया है, उनके जनाजे पर नमाज पढ़ी गई और खुफिया तौर पर सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। इसने अपनी आंखों से ये मंजर देखा है।
2: ए शाम वालो, जान लो और बाखबर हो जाओ कि अली इब्ने अबी तालिब अपने एक चाहने वाले की तलवार से कत्ल कर दिए गए। इसकी वजह से पूरे इराक में फितना और फसाद खड़ा हो गया है। फितनागर इस आग को शाम तक फैलाना चाहते हैं। जो तलवार उठा सकता है अपनी तलवार उठा ले और फितनागर के मुकाबले के लिए तैयार हो जाए।
3: ये दरबदरी और जिलावतनी बर्दाश्त की, मुझे असीरी बर्दाश्त करना पड़ी, गुलामी झेलनी पड़ी, ताजियाने खाने पड़े, मुसीबतें बर्दाश्त की, इसी उम्मीद में कि अपने बाप की वसीयत पर अमल कर सकूं और अली के कदमों तक पहुंच सकूं। मगर अंजाम क्या हुआ? लेकिन मैं अभी तक शाम में हूं, माविया के कुत्तों के खौफ से इस घर में पोशीदा हूं, और खवारिज के भेड़ियों ने मेरे मौला को शहीद कर डाला।
4: अगर आज हमारे लिए शबे अजा है तो मुआविया के लिए ईद है। वो खुद को बिला मुकाबला खिलाफत का वारिस समझता है, अतराफ के कबीलों के सरदारों को जमा किया है और कूफे पे हमले का इरादा रखता है। कबल इसके कि अली का जानशीन मुअय्यन किया जाए, कूफे पे कब्जा कर लें।
5: पेदर, आप जानते हैं मौला का जानशीन कौन होगा?
0: अगर कूफे वाले हक व इंसाफ से काम लें तो अबा मोहम्मद को होना चाहिए।
6: हमारे लिए मुहिम नहीं है कि कूफे वाले किसको चुनते हैं, हमारी नज़र में तो जानशीन हसन इब्न अली हैं।
5: हमको अहले कूफा की राय से कोई मतलब नहीं, वो हमेशा गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं।
6: हमें न कूफे वालों की बेयत पर एतमाद है न उनकी खयानत की फिक्र है।
7: हम मजबूर नहीं है कि हर किसी के आगे गर्दन झुका दें।
6: हम हसन इब्न अली की बेयत कर लेते हैं और हमारे ख्याल में इमाम अली के तमाम बावफा दोस्तों को भी इनकी बेयत कर लेनी चाहिए।
0: अब हमारा बस एक ही वजीफा है, वो ये है कि अबा मोहम्मद को माविया के फितनों से जल्द ही आगाह कर दें।
8: Thank you.

0: सबका पानी ले जाना।
1: जाओ।
2: ए, मर्द पुरुष इधर है।
3: कहाँ है? कहाँ? वहां दरवाजे के पास।

0: मुसाफिर हैं, बाजार जा रहे हैं।
1: तुमने हमारा ऊंट चुराया ना?
2: झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो।
1: नहीं,
0: जंगली हो गए।

0: मैंने कभी ऐसा नहीं सुना। मैंने कहीं से ये नहीं सुना कि घोड़े के हाथ पांव बांधने से वो चलने का ढंग सीख जाता है।
1: तुम घुड़सवार नहीं हो जरबी, तुमने सरदारी नहीं की है।
0: जरबी आपके सदके मेरे आका, बताओ ताकि तुम्हारा नौकर भी सीख जाए।
1: अगर उसके हाथ पांव बांध दो और फिर इसे चलाओ तो उसे आदत हो जाएगी कि शुतुरमुर्ग की तरह न चले और अपने सवार का दिल न तोड़े।
0: इसकी माँ चीख चीख कर मर जाएगी।
1: हो गया। बहुत खूब सीखे हो सर भी।
0: जी हाँ, सीधा हाथ उल्टे हाथ पे और सीधा पाँव उल्टे पाँव पे बांधना है। चश्मा भी छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए, हमेशा एक कायदे पे होना चाहिए।
1: देखो क्या खूब दिल लुभा रहा है, कद भी खूब ऊंचा है। कहाँ कहाँ उड़ने का कितना शौक है इसे। जरबी आज से इसे दुलदुल पुकारना।
0: दुलदुल?
1: अरब के शाहसवार का घोड़ा अली का।
0: क्या गिरा कदर नाम है दुलदुल।
1: ये लो, हर रोज इसके साथ मश करना।
0: शाबाश शाबाश बेटे, हबू साहब को ताजा दम कर दिया तुमने।
1: उसे मत डराओ, मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा सा वैश्य रहे।
2: अगर आपको छोड़ दिया जाए तो ग़ुरूबे आफ्ताब तक इस घोड़े के साथ लगे रहेंगे।
1: घोड़ा नहीं है उम्रा, अजदहा है। देखो तो इसे।
2: मैं आज तक सोचती थी कि फकत तुम्हारी तलवार से मुझे हसद करना चाहिए मुख्तार, मगर आज मैं समझ गई कि नहीं, उम्रा के और भी रकीब हैं।
1: तुम्हारे मद्दे मुकाबिल तो उम्मे साबित है। मुख्तार अपनी तलवार और घोड़े के बगैर मुख्तार नहीं, परिंदे उड़ाने वाला पुतला है।
2: जाओ जरा मुंह हाथ धो लो, अपने कपड़े वगैरह तब्दील कर लो। भूल गए आज रात हमारे पास मेहमान आ रहे हैं। जरबी, दुलदुल का सर पकड़ो। ताकि गूंगे और अंधे हो जाएं अली को बुरा कहने वाले। इधर आओ जवान, इस नजरे बद से हिफाजत की दुआ को तुम बाजू पे बांधो। कूफियों की नजरें कुत्तों की सी हैं।
1: जानता हूं कि इस गंदे नफ्स और कुत्ते की आंखों वाले के खौफ से मेरे और दुदुल के लिए फिक्रमंद हो। उमर इरशाद ऐन नजासत और नहुसत है।
0: खुदा की कसम, जब से मैंने बानो से सुना है कि उमर इरशाद आज यहाँ मेहमान बनकर आ रहा है तो कम अज कम 10 दफा अर-रहीम का विर्द किया। खुदा ही उसके शर से बचा सकता है।
1: काश किसी तरह उन लोगों को टाल देती तुम। खुदा जानता है कि उस बेगैरत के खून का कितना प्यासा हूं मैं।

0: চাচাজান, চাচাজান মদদ কিজিয়ে, মেরা জিগর জল রহা হ্যায় চাচাজান।
1: যাও ওর খুদা কা শুকর করো কি তুমারি জবান সে গিরা উঠা লি গই, অলি কে নাম নে তুমে বচা লিয়া।
0: মর জাইয়ে চাচাজান, এক গুল পানি দে দে মুঝে।
1: ये पानी किसी और का है मुख्तार, मेरा नहीं है।
0: किसका है?
1: अली के बेटे हसन मुश्तबा का, उन्हें जहर दे दिया गया। ये पानी उनके टुकड़ों में बटे हुए जिगर की दवा है।
0: चाचा जान, मेरा जिगर जल रहा है, इस पानी में से एक घूंट मुझे भी दे दीजिए, यकीनन इमाम हसन राजी होंगे।
1: उन्हीं को मदद के लिए पुकारो, अगर तुमसे राजी हुए तो जरूर जवाब देंगे।
0: मैं शर्मिंदा हूं।

0: तुम किससे बात कर रहे थे मुख्तार?
1: पानी में अपनी शबीह से मेरे ख्वाबों की ताबीर मुझे बता रही थी। मेरे सीने में एक आग है उम्रा, अगर उसे भड़कने का मौका मिल गया तो दुनिया को जला देगी। काश आज रात की दावत कबूल न की होती।
0: मैं जारिया की शकूक से डर गई मुख्तार, उसका दिल टूटने का खौफ था। तुम्हें नहीं पता कैसे गुजारिश कर रही थी।
1: ये मेहमान बनकर आना एक साजिश है। खुदा जानता है कि पिछले साहब ने इस बार मेरे लिए कौन सा ख्वाब देख रखा है। अगर दोस्ती का इरादा होता तो नादिया उम्रा से ज्यादा इसके मुस्तहिक थी।
0: तुम्हें मैल मत लाओ मुख्तार, कौन सा अच्छा ख्वाब, कौन सी साजिश? मेरी और तुम्हारी शादी के बहाने तुम्हारी बहन और बहनोई मिलने और खुशियां बांटने के लिए आ रहे हैं।
1: काश मैं तुम्हारी बात को नजरअंदाज कर सकता।
0: जारिया ने इसी वजह से उम्रा का इंतखाब किया है, क्योंकि वो जानती है कि मुख्तार उम्रा के आगे गुलाम की मानिंद है, मुतीउ फरमा बरदार।
1: मुख्तार की गर्दन तो कूफा के हाकिम की बेटी के सामने झुकनी ही चाहिए।
0: यानी उम्रा की बात कीमती है क्योंकि उसका बाप हाकिम कूफा है।
1: नहीं बानू, हाकिम कूफा तो सिर्फ बहाना है। सोबत इश्क कर डालती है।

0: इतना अपनी मूंछों से मत खेलो उमर। ऐसा काम करना चाहते हो कि मुख्तार तुम्हारे मुखालिफ हो जाए?
1: आदत को छोड़ देना बीमारी का सबब बनता है। तुम बरहक हो, मुझे बज़ाहिर अफसरदा और गमगीन नजर आना चाहिए। मूंछों को ताव देना यानी मध्य मुकाबिल को जंग के लिए पुकारना।
0: और सुनो, हुस्न और गम अंधों को मत भूलना।
1: ये ठीक है। ये शक्ल कैसी रहेगी?
0: याद रहे कि इस दीदार का मकसद खुदा की खुशनूदी थी और छुपे हुए दुश्मन का खौफ जो सांप की मिसल है।

0: मैं अपना बहनों वाला कर्ज चुकाने आई हूँ। मुझे माफ कर दो भाई, तुम्हारे महासन में सफेद बाल देख रही हूँ, मैं मर जाऊँ।
1: बहुत शुक्रिया कि हमें याद किया।
2: बानो उम्रा कैसी है?
3: आपका लुत्फ है शेख, ठीक हूँ।
2: लफका की जन्नत में क्या कर रही हैं आप?
3: मैं तो अपने चूजों और परिंदों के साथ मसरूफ रहती हूँ।
2: हाँ मशगला तो अच्छा है। क्या आपने सुना कि अम्मा हव्वा जन्नत से बेजार होकर बाबा आदम को दुनिया की दोजख की तरफ ले गई? क्या आप हमारे मुख्तार को कूफे की दोजख की तरफ फरेब देकर नहीं ले जाना चाहेगी?
3: इस दफा कहानी उल्टी है शेख। इस बार बाबा आदम अम्मा हव्वा को कूफा की दोजख से लफका की जन्नत में लेकर आ गए हैं।
2: हक यह है कि नौमान इब्ने बशीर जैसे अमीर के हाथों की पली हुई हो। शाबाश है इस हाजिर जवाबी पर। मुख्तार ने ठीक ही किया कि कूफे के जहन्नुम से निकल गया। लफका की जन्नत आप दोनों को रास आए और आप हमेशा खुश रहें।

0: और जिस दिन से तुम्हारा और मुख्तार का निकाह हुआ है उस दिन से भी सारे आलम की लानतें मुझ पर निसार कर रही है। सच तो यह है कि मैं डर रही हूँ कि कहीं काली नियत वाली न बन जाए और इन सब आहों और लानतों की बदौलत मेरा खाना खराब कर दे।
1: अगर उसकी लानत मलामत कारी जहब लगाने वाली होती तो मुझे अब तक 7 कफन पहना चुकी होती। पता मुख्तार भी ठीक नहीं कर रहा है। मैं साबित उसकी बीवी है, उसे ज्यादा से ज्यादा कुफा जाना चाहिए। मैंने तो बहुत समझाया मगर वो ना माना। वो आज भी लफ्का को कुफा पर तरजीह देता है।
0: मुख्तार हमेशा कुफा से बेजार रहा है उमरा। कुफा उसके लिए बुरी दास्तानों से भरा हुआ है। लफ्का को आखिर तरजीह क्यों ना दे? लफ्का का मतलब है मुख्तार का इश्क, यानी उमरा।

0: इस रोटी और खाने का सवाब मेजबान के मुर्दगान को पहुंचा, और रोजा रिजवान के ताम और शराब इस मेजबान के नसीब में लिखते। आपकी सखावत पायदार, आपकी खैर आफियत बरकरार, आपके गुज़िश्तगान का सुफरा रंगीन हो, आपका दान शीरी हो, बानुमरा के हाथ कभी ना दुखे। इंशाल्लाह हम जिंदा हों और आपके हक का वलीमा भी खा सकें।
1: नौशी जान आपको।
0: खुदाया तेरे नेमतों का शुक्रिया, जो दिया ना दिया उसका भी शुक्रिया। खुदाया तौबा तू बड़ा है और हम हकीर हैं। इस ग्रोह के गुनाहों से दरगुजर कर, चाहे वो छोटे हों या बड़े, कम हो या ज्यादा।
2: दुआ और अलफू करने के अलावा और क्या करते हो उमर?
0: मुस्लिमीन और मुस्लिमात और मोमिनीन मोमिनात, एक मस्जिद बनाई है मैंने। इस पर मेरा नाम नहीं लिखा गया कि कहीं रियाकारी ना हो जाए।
2: बदतरीन गुनाह यह है कि तुम जुल्म जोर करने वाले के कारिंदे रहो। जब तक एक सितमगर हाकिम का खिदमत गुजार हो, रहमत इलाही के बेकरार समंदर से महरूम रहोगे।
0: हाकिम सितमगर से कहीं आपकी मुराद खालिल मोमिनीन मुआविया तो नहीं है?
3: बेहतर है कि आज की रात आप लोग सियासी गुफ्तगू ना करें।
1: अरे नहीं जारिया, आखिर क्यों बेजा तवक्को कर रही हो? जंगजू मर्दों की आदत होती है, जहां उनकी तलवार म्यान में होती है वहां वो अपनी जबान की तेजी से खुरेजी करते हैं।
0: एहसनत बानो मरहबा, अब मैं समझा कि मेरे भाई की सरकश रूह किस मसीहा के एजाज से लफका में फंसी हुई है। आप तो अपना काम कर गई बानो। हाय हाय हाय, मुख्तार और जैसे लोग औरत जिंदगी बाग और जरात के हाथों बनने के लिए पैदा नहीं हुए। कभी कभी इलाही हिकमतों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। बेशक इस शेर को काबू में रखने के लिए हुनर चाहिए, हुनर चाहिए।
2: मैं भी बाज़ औक़ात तकदीर के कारोबार पर खूब हंसता हूँ। अगर मुझे इलाही हिकमतों पर यकीन न होता तो दरगाह इलाही में जरूर शिकवा करता। हंसो उमर, हंसो। तुम्हारी हंसी भी दुनिया जहां के तानों की फहरिस्त में है। अगर खुदा ने चाहा तो इन्हीं दिनों मेरे हाथों पैरों की डोर खोल दी जाएगी।
0: क्या कुछ हुआ है मुख्तार?
2: हाँ, कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है।
0: अगर मैं गलती ना करूं तो जो शराब तुमने डाली है उसने असर कर दिया है। मैं तुम्हारे कलबी एहसासात को उसी बचपने के दौर से जानता हूं, जब हम लकड़ी की तलवारों से बादशाहत की मशकें करते थे। मुआविया की कुर्सी पर नियत नहीं लगा सकते, क्योंकि मुआविया ने उसे बहुत पहले से यजीद के लिए तैयार कर दिया है। और रह जाएगी लश्कर की सिपाह सालारी, या फिर मुमकिन है कि ईरान जैसे हसीन मुल्क के इलाके की हुकूमत मिल जाए। सही अंदाजा लगाया है ना मैंने?

0: आपके समझ में आ रहा है उमर किस चीज के बारे में बात कर रहा है?
1: शेख की बातें उनके अपने ख्वाबों की तरह हैं मुख्तार। मुल्क रह पर हुकूमत करना शेख का ख्वाब ख्याल हो चुकी है।
2: जारिया, तुमने मेरे छुपे हुए राज को फाश किया है।
3: कौन सा छुपा हुआ राज? सारा जहां जानता है कि तुम हुकूमत रह के चाहत में दीवाने हुए जा रहे हो।
2: आप क्यों बिगड़ रही हैं नाज़नीन? उसी की हुकूमत तो आप ही का दिखाया हुआ ख्वाब है। हमारा ख्वाब आपकी सादत है।
3: जी हाँ।
1: जारिया, आप सहमत मत कीजिए।
3: कोई सहमत की बात नहीं है बहन।
1: खाना आपके मतलब का था?
2: खुदा इजाफा करे, वाकई बहुत लजीज खाना था। बड़े अरसे से मैंने ऐसा लजीज कबाब नहीं खाया।
1: आपके नोशे जान।
0: जानते हो आज रात का खाया हुआ कबाब क्यों लजीज था?
2: भाई, मुफ्त का खाना तो लजीज ही होता है ना।
0: तुम्हें तो मुफ्त लुक में खाने की आदत है इब्लीस। जो खाना तुमने खाया है वो इसलिए लजीज था क्योंकि तैयब ताहिर था, गंदगी से पाक।
2: मजाक कर रहे हैं आप?
0: मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी माँ का दूध भी आज रात के इस कबाब जितना पाक होगा।
2: फिर तो मैं खुश नसीब हूँ कि मैं उस लुक्मे की बरकत से फिशारे कब्र से बच जाऊंगा।
0: उस पकी हुई शराब और ईरान के हसीन मुल्क की हुकूमत का क्या किस्सा था?
2: यानी क्या वाकई कुछ नहीं जानते आप?
0: मैं क्या चीज नहीं जानता खबीस?
2: बस भी करो मुख्तार, बेवकूफों की अदाएं खूब बजा लाते हो।
0: बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम आबिद और जाहिदों की नकल खूब उतार लेते हो। तुम आज रात किस मतलब नियत से अपने आप को यहाँ लाए हो? अब कौन सा गिरा हुआ मशवरा है फरेब इंसान?
2: तुमने शादी की है, नई जगह आए हो तो हम मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। कुछ गलत किया हमने?
0: अपने दिल की बात करो खन्नास।
2: मुख्तार, इस रिश्ते से तुम अपनी तमन्ना तक पहुंच जाओगे, शक मत करना। नुमान इब्ने बशीर तुम्हारा नया ससुर, तुम्हारे पुराने ससुर समरा इब्ने जंदब से फर्श से अर्श के जितने फर्क रखता है। इस दफा तुम्हारी कमन का हलकर एक चाको चौबंद शिकार की तरफ गिरा है। नौमान खलीफा के बहुत करीब है। जिस विलायत का हाकिम बनना चाहोगे वो अपनी बेटी के जहेज के तौर पर दे सकता है। तो जब तक तंदूर गरम है अपनी रोटी चिपका दो। क्या हुआ है?
4: आका जान, कियान आया है।
0: कियान? रात के इस वक्त? ठीक है, उसे अंदर बुलाओ।
4: मैंने उन्हें बुलाया था आका, मगर वो अंदर आने से

0: उमर जब भी अपनी मूछों से खेलता है, इसका मतलब यह है कि बहुत खैरतमंद हो गया है। अब तक कयान को एक रकीब की निगाह से देखता है। ये खसलत बहुत जालिमाना है। गुस्सा मत हो बंदा खुदा, तुम उस सरदार के बेटे हो जिसने ईरान को फतह किया। तुमसे ये बईद है कि एक ईरानी का नाम सुनकर इतना परेशान हो जाओ।
1: मुझे यकीन है कि ये गधा बिना वजह नहीं आया होगा।
0: मुझे यकीन है कि जारिया का हाथ मांगने नहीं आया।
1: क्यान अब तक मुख्तार से मिलता है बानो?
2: मिलता नहीं है शेख, क्यान और मुख्तार बहुत गहरे दोस्त हैं।
1: इन दोनों की दोस्ती मेरे लिए पहेली बन गई है। इन दोनों की दोस्ती दो बाप के कातलों की दोस्ती है। मुख्तार का बाप जंग में ईरानियों के साथ मारा गया,

0: तुम मेरी रकीब हो।
1: आपकी रकीब तो अरबी महलात की मलकाएं हैं बानू, मैं तो एक ईरानी सादा लो इंसान की बेटी हूँ।
0: उस जमीन की तरह हो जिसने कभी धूप न देखी हो। जानते हो खून किस रंग का होता है?
1: मैं आपका मतलब नहीं समझ पा रही।
0: वो तो नजर आ रहा है कि तुम समझ नहीं रही, क्योंकि तुम्हारे चेहरे में तो खून ही नहीं है। सफेद कपड़े पहन लो तो बिल्कुल उस रूह की तरह दिखोगे जो कब्र से उठी हो।
1: रूह होना शेर आशुब की बीवी से बेहतर है।

0: बहुत बेरहम हो तुम मुख्तार कि तहजीब और जवां मर्दी की रस्म से बईद है। वो लोग मेहमान थे और उनका एहतराम वाजिब था। तुमने अपने इस बुरे बर्ताव से मुझे शर्मिंदा कर दिया।
1: कौन सा बुरा बर्ताव उमरा?
0: यही कि अपनी जबान से उन्हें जख्मी कर दिया और अपने किनायाबाजियों से उनकी तहकीर की तुमने। ये आपका एक और निराला कारनामा। आह, वाकईतन शर्मिंदगी की बात है।
1: उमर साद आज रात मेहमानी पर नहीं दलाली के लिए आया था। वो मेरे और तुम्हारे बाप के दरमियान एक मामले का दलाल बनकर आया था। वो चाहता था कि मुझे इस बात पर आमादा करे कि मैं अपने ससुर हाकिम कूफा से, जो कि मुआविया के खास मुकर्रबीन में से हैं, उनसे उनकी बेटी के जहेज के तौर पर किसी भी इलाके की हुकूमत का मुतालबा करूं। क्या ये कोई कम अहानत है? बोलो, ऐसे इबलीस से कैसा बर्ताव करूं? बताओ, उसे जवाब दूं इस बात का? उसके पैर छूकर उसके सामने उठक बैठक करूं?
0: क्या वाकई ऐसा मशवरा देने आया था?
1: हाँ, और इंतहाई बेशर्मी के साथ आया था ताकि इस मामले पर बात करे।
0: फिर यकीनन हुकूमत रे को भी दलाली का हक समझकर मांग रहा होगा।
1: मेरा तर्क चेहरा देखकर उसने दलाली के हक में बात नहीं की।
0: मैं कितनी सादा लौथी के जारिया की बातों पर भरोसा करके बैठी थी, यानी मुबारकबाद और खुशियां बांटना और दोस्ती वगैरह सब बहाना था।
1: बखुदा कसम उमरा, अगर तुम्हारा लिहाज न होता तो इस मलून को 15 साल की नींदों के हराम करने और वहशी ख्वाबों के बदले जो उसका तोहफा है, मैं उसकी गर्दन उड़ा देता। उसने एक बार दीमक की तरह मेरा ईमान कमजोर कर दिया और अली के बेटे की हिमायत करने में मुझे सुस्त कर दिया। 15 साल तक मेरे जमीर के ताने मेरा जीना हराम करते रहे। खुदा ने चाहा तो मैं गुजरे हुए का अजाला करूंगा। बंदर से खेलने वाला शराबी यजीद एक बहुत अच्छा बहाना है दोबारा अलवी हुकूमत बर्पा करने के लिए। कूफा कल से मैदानी जंग है। किसी भी तरह तुम्हारे वालिद को किनारा कशी करने के लिए राजी करना होगा हमें।
0: अगर राजी नहीं हुए तो उन पर तलवार खींच लोगे?
1: तो फिर क्या करूं उमरा? वो लिबास जो एक लाहुबाली और फासिक नौजवान के कंधों पर डाला गया है, वो मीरा से पयाम्बर है। या तो मुझे अपने आप को गोशा नशीन बनाकर अपने इन भयानक ख्वाब व ख्याल की आग में जलते रहना होगा, या फिर तलवार उठाकर यजीद अय्याश पर हमला करना होगा। यजीद के साथ होना नंगवार है, तुम्हारे बाप के शाय निशान नहीं। हमें कुछ भी करके उन्हें इस शिर्क व कुफ्र की बिसात की खिदमत करने से रोकना होगा।

0: मुझे लगता है कि इस मैदान का असल कुर्बानी का बकरा मैं हूं, या मेरा बाप या मेरा शौहर। खुदाया तू ही मेरी मदद फरमा।
1: कूफा, हजारों रंगों के हजार कबीलों का शहर।

0: ये क्या वक्त है गाने और नाचने का?
1: शादी में कोई चने और हलवे तो खैरात नहीं किए जाते?
0: ये शादी खलीफा की मौत की तोहीन है।
1: खलीफा मर गया सो मरने दो, अब क्या लोग हर किसी के मरने पर आजादार हो जाएं?
0: नाच गाना खलीफा की मौत की तोहीन है।
2: ये शादी खलीफा की मौत की तोहीन है।
3: यकीनन खलीफे के साथ महफूज होगा।
1: बेगैरत, बेशरम, मेरे बाप के मरने पर हंसते हो?
4: वो लोग जिन पर अगर मुसीबत आ जाए तो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मजलिस आजा और सोग है उस शख्स के इंतकाले पुर मलाल पर जो के कातिबे वही है, खालुल मोमिनीन, खादिमुल मुस्लिमीन, नासिरुद्दीन, फखरुल मुलूक, फातेह ममालिक रोम और कुस्तुंतुनिया और नील, फिरौनों के मकबरों को वीरान करने वाले मरहूम मखफूर जिसका मुकाम खुल्द बरी है, जनाब मुआविया इब्ने अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल अफसोसनाक पर जिसने बिलाखिर मौत का जाम नोश फरमाया और बाकी जहान की तरफ चल बसा।
5: अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और उलिल अम्र की इताअत करो जो तुम में से हैं। वो उलिल अम्र जिसकी इताअत पर खुदा उन करीम हमें हुक्म कर रहा है वो कौन है? कल तक हमारी जबान कासिर थी और हमारी दलील कमजोर थी क्योंकि मुआविया बज़ाहिर दीनदार नजर आता था और अपने आप को अहकाम दीन पर चलने वाला समझता था। सुन्नत रसूल पर अमल करने और शैखैन के तरीके पर होने का दावा करता था और अपनी सियासत और चालाकी और जबरदस्ती से शियों पर इतना दबाव डाला कि अहमक शियों को अपना हम अकीदा बना लिया और आखिरकार वो वक्त आ गया कि उलमाए शिया को खाना नशीनी इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। मुआविया जो कोई भी था और उसने जो कुछ भी किया उसकी कजावत और फैसला खुदा के साथ, मगर आज तो हमारी जबानें खुली हैं। हमारा उलिल अम्र यजीद है

सवाल जब कोई पूछता है तो उसके अंदर चार किस्म के लोगों को फायदा पहुंचता है। सवाल पूछने वाले को, जिससे पूछा गया है उसको भी फायदा होता है, सुनने वाले को फायदा होता है, और उनको फायदा होता है जो ऐसे लोगों से रिश्ता और ताल्लुक रखता है, उनसे मोहब्बत करता है। चार किस्म के लोगों को फायदा हो। तो इस्लाम जो है हमें एनकरेज करता है कि भाई तुम सवाल पूछो। और माशाल्लाह हमारे उलमा हमारे इस जमाने के अंदर जो है हमारे कितने ऐसे वाई वाई जो क्वेश्चन है उनके जवाबात हमें दे रहे हैं। क्यों? हाँ, मिसाल के तौर पर जना मैयत को जो है 3 मुख्तलिफ किस्म के पानी से नहलाया जाता है। क्यों? हाँ, हॉस्पिटल के अंदर आप देखें, दीगर अकवाम के अंदर आप देखें, हाँ, बेहतरीन शैम्पू का इस्तेमाल करके बात ख़त्म कर देते हैं, नहला देते हैं अपनी मैयत को। क्यों? इस्लाम कहता है कि 3 मुख्तलिफ, इसका जवाब है वाई, उसका जवाब है हाँ? कहा तुम आइडल वर्शिप न करो, पत्थर की पूजा न करो, तो खाने काबा पत्थर से तो है, क्यों उसके सामने हम सजदा करते हैं, इसका भी जवाब है। और ये जो वाई वाई वाई क्वेश्चन है, कई किताबें अंग्रेजी में मौजूद है, माशाल्लाह उलमा ने काम भी किया है। फलसफतुल अहकाम, मिसाल के तौर पर आयतुल्ला नासिर मकारिम और आयतुल्ला जाफर सुबहानी ने मिलकर जो किताब लिखी है, लॉजिक ऑफ इस्लामिक लॉज, इट इज अवेलेबल टुडे इन द मार्केट, इसे उठाएं, इसे पढ़ें। इनके अंदर हमारे वायों का जवाब दिया गया है। ये वाई वाई वाई जो है इसका जवाब दिया गया। तो भाई इस्लाम हमें डिस्करेज नहीं कर रहा, इनकरेज कर रहा है कि तुम सवाल पूछो, लेकिन याद रखो सवाल पूछो सीखने के लिए, सवाल पूछो समझने के लिए, उलझने के लिए नहीं, आर्ग्यूमेंट्स के लिए नहीं, डिबेट करने के लिए नहीं, समझने के लिए। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु वसल्लमहु अलैह जो दावा सलूनी करते थे, सलूनी सलूनी कबला अंतफ़िदूनी, पूछ लो इससे काबल के तुम मुझे खो दो, पूछो जो तुम्हें पूछना है। हाँ, और लोगों ने क्या सवाल किया, सर पे कितने बाल, कितने बाल है हमारे पास। हाँ, और जब आपने कहा सलूनी अंतुरुक समावात फइन्नी अअलमु बिहा मिन तुरुकिल अर्ध, मुझे आसमान के रास्तों के बारे में पूछो, आसमान के रास्तों से मैं दुनिया के रास्तों से ज्यादा वाकिफ हूँ। तो उस वक्त लोग सोच रहे थे कि आसमानों पर भी गधे होंगे, नाके चलते होंगे, और आज देखिए सुबह को लंदन में होंगे, रात को दारुस्सलाम में होंगे। अब सही है या नहीं? लेकिन यही मौला है, एक मर्तबा जब आपने फरमाया है मिंबर कूफा से सलूनी कबला अंतफ़िदूनी, पूछो जो तुम्हें पूछना है। हुआ ये कि एक शख्स खड़ा हो गया और उसके अंदाज से इमाम को पता चल गया कि यह सवाल पूछ रहा है सीखने के लिए नहीं, उलझने के लिए, डिबेट करने के लिए। कहा कि ए अली, कुरान मजीद के अंदर ये आयत है, वज़्ज़ारियाति ज़र्वा, और खुदा जो है उन हवाओं का कसम खाता है कि जो बादलों को तत्तर बत्तर कर देती है, इसका मतलब क्या है? उसने सवाल पूछा, लेकिन अंदाज से, द वे पीपल आस्क क्वेश्चंस, यू कैन नो कि ये पूछ रहा है जानने के लिए, छेड़ने के लिए। हाँ, एक सवाल आप देखेंगे 1000 मौलवी और मुल्लों से किया जाएगा कौम के अंदर, है या नहीं? हर नया मौलाना आएगा उसे यही सवाल पूछा जाएगा, हिंदू का खा सकते हैं, पूछा जाता है या नहीं? हाँ, और दिगर जो मसाइल है, आज ये आया उसे पूछ लिया, कल वो आया उसे पूछ लिया, मौलाना साहब यहाँ बैठे हैं दो उनसे पूछा। हाँ, और फिर बैठ के कंपेयर करें, इसने ये कहा उसने ये कहा, इसने ये कहा उसने ये कहा, होता है या नहीं इस कौम के अंदर? हाँ, इस्लाम हमें सवाल करने से मेरे दोस्तों नहीं रोकता, लेकिन इमाम ने जब उसे देखा, उसके अंदाज को पहचाना, तो आपने कहा वाई हो तुझ पर सवाल पूछ, सीखने के लिए उलझने के लिए नहीं, आर्ग्यूमेंट के लिए नहीं, डिबेट के लिए, सीखने के लिए। और दूसरी बात यह है कि कसरत सवाल से बचो। हाँ, सवाल ने तुमने पूछा, तुम्हें जवाब दे दिया गया, उस पर इत्मीनान रखो, अब उस पोस्टमार्टम करके हाँ दूसरी बातें उनमें से न निकालो, क्योंकि तुम कंफ्यूजन में मुब्तला होगे। हाँ, एक जमाना था जब हमारे महाराज आयतुल्ला अबुल कासिम अल खोई, उससे पहले आयतुल्ला मोहसिन अल हकीम रहमतुल्लाहि अलैहिम, उनका ज़माना था, तो एक ही किताब थी रिसाले अमलिया की, है या नहीं, इस्लामिक लॉज की, कि जिस पर हम अमल किया करते थे। हाँ, जैसे भी था किताब एक थी, आलिम दीन था, किताब को उठा के मसलों मसाइल बयान करते, लेकिन हम लोग हुए इंटेलेक्चुअल। हाँ, अब सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, मसला एक होगा। हाँ, 100 तरीका हम इख्तियार करेंगे वो एक सवाल पूछने के लिए, नतीजा क्या निकला, फंसे या ना फंसे आज। हाँ, कई किताबें निकल आई। हाँ,
مسائل المستحدثة

contemporary masail, ye masail, wo masail, aur khud ko phasaye aur ab shikayat kar rahe hain ki dekho ye log kitne daqeeq hai, kitne ye choti choti specific cheez ko bhi chhodte nahi hai. Are badbakht, ye tumhara hi to kaam tha, tumne to sawal pucha, isliye phase. Kasrat e sawal se bacho. Agar tumhe jawab diya gaya, ha, tumko itminan aa gaya, khalas us par amal karo. Ha, aur kuch cheeze aisi hain Islam ke andar, bahut si cheezon ka jawab hame diya gaya, lekin kuch cheeze aisi bhi hain Quran Majeed ke andar ke jiska ilm ulama ko bhi nahi hai. Sahi hai ya nahi? Ha, kuch aisi baatein bhi ki gayi hai jiska ilm ulama ko bhi hasil nahi hai. Ho sakta hai aage jaake wo unko pata chale, lekin filhal kuch cheeze hain unko ilm nahi hai. Ha, uska matlab ye hua ke us par amal nahi karenge agar hukm ilahi hai. Kyunki khuda par iman hai, khuda par bharosa hai, wo hamara khaliq hai, wo hame hukm de raha hai, khalas baat khatam karo. Ha, ya ayyuhalladhina amanu la tasalu an ashiyain in tubdalakum tasukum, aisi cheezon ke bare mein sawal na poocho ae sahibane iman, jinke bare mein agar tumhe bata diya gaya to tumhe bura lagega ya tumhe absorb nahi kar paoge. Quran ye keh raha hai, paigambar ke zamane mein jis waqt haj ko wajib kiya gaya hai, paigambar ne musalmanon ko jama kiya aur kaha ab tumhe har saal mein ek martaba, zindagi mein ek martaba jo hai haj wajib hai, to tum jao haj ke liye. Ek baitha tha, khada ho gaya, kaha ya rasulullah sawal hai, pucha kya hai, kaha ye haj jo hai har saal wajib hoga ya sirf is saal, sawal kiya. Ab paigambar khamosh hai, aapne koi jawab nahi diya, uski taraf dekha bhi nahi, phir se usne question kiya, phir se khamosh rahe. Agar chahte straight forward question tha, jawab de dete ke bhai zindagi mein ek martaba hai ya nahi, lekin paigambar tarbiyat dena chahte the musalmanon ko. Ab khamosh rahe, teesri bar jab usne kaha hai to paigambar ne gusse se uski taraf dekha aur kaha, why ho tujh par bar bar tu kyu is masle par israr kar raha hai, agar maine tere jawab mein keh diya ha to har saal tujhe haj ke liye jana padega, ha, aur har saal agar tu haj ko ada nahi kar saka to tu gunahgar hoga Allah ki nazar mein, to tum israr mat ke jaise tumhe kaha jata hai aise tum karo. Aur ye academia se aur intellectualism ke naam se aur progression se jo hai hum apna liberal interpretation de rahe hain ahkam ka, jo aaya dimag mein kaha zamane mein gaadiyan chal rahi, hawai jahaz aur, ye tumhara kaam nahi hai bhai. Kaha hame Islam ko challenge karna chahiye aajkal ke zamane mein, Islam ko hame challenge karna chahiye, hame sikhaya gaya college ke andar, university ke andar ke tum चैलेंज किया, हम सवाल न पूछे, हमें चैलेंज करने, भाई चैलेंज तुम्हें करना हो कुरान की आयतों को तो उसकी जगह है. हाँ, पहले जाके इल्म तो हासिल करो. हाँ, कुम जाए नजफ को जाओ और देखो, वहाँ दरसे खारिज में जाके बैठो. हाँ, कुरान का इल्म हासिल करो और फिर जो मुज्तहिदीन है उनके साथ आर्ग्यू करो, लेकिन इल्म नहीं, कुरान पढ़ने भी नहीं जानते. हाँ, और अहकाम चैलेंज करने जाते. और एक पैगाम और उसके बाद मुझे मसाइब पर आना है मेरे दोस्तों. सबसे बड़ी मुसीबत आज हमारी कौम के अंदर जो है, ये बाहर से जो हम लोग लाते हैं ट्रेनिंग के लिए कौम के अंदर, खास तौर से दीनी बाबतों के अंदर, हमारे मदारिस के अंदर टीचर्स को, अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये मामला जो है ठंडा हुआ है, लेकिन कसरत से बाहर लाते, बाहर से लेके आते थे ट्रेनर्स को, टीचर ट्रेनिंग कोर्स के लिए, पता नहीं यहाँ आए या नहीं आए, दिगर कोर्सेज के लिए आते हैं. हाँ, और कौम की सबसे बड़ी मुसीबत ये है हमारी कि जब चमड़ी सफ़ेद देखते हैं तो वो फील इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स विद इन अस, हम ये समझते हैं कोई फरिश्ता आया है आसमान से, है या नहीं, और हमारे साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है. जब कौम के अंदर इतने सारे प्रोफेशनल्स हैं मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर, उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता, इतने पैसे खर्च करके बाहर से इनको बुलाया जाए और ये आके क्या हंक जाते हैं, क्या बोल जाते हैं. याद रखें मेरे दोस्तों, फलियंदुर इंसान इला तआम ही, कुरान कह रहा है इंसान के लिए ज़रूरी यह है कि वो ये देखे कि वो क्या खा रहा है, कौन सी गिज़ा मुँह में डाल रहा है. इसका मतलब क्या है, इंसान जब खाना खाता है तो देखता है कि गिज़ा कैसी है, कहीं ऐसा ना हो कि उस गिज़ा की वजह से वो बीमार हो जाए, जिस्मानी बीमारी में मुबतला हो, है या नहीं. इमाम अल-बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते इससे मुराद इल्म भी है, उसके सोर्स को देखो कि ये नॉलेज तुम्हें कहाँ से मिल रहा है और इन्फॉर्मेशन क्या, क्योंकि तुम्हारी रूह बीमार हो जाएगी. लेकिन हम सोचते हैं, एक मदरसे के अंदर ट्रेनर्स को बुलाया गया सिखाने को, मदरसे के टीचर्स को हाउ टू टीच अहकाम फिक्ह, जो स्टूडेंट्स बाकायदा, मैं मेंबर से बात कर रहा हूं चैलेंज के साथ.

सब जानते हैं, जो जानते हैं वो जानते हैं इस बात को। और ये ट्रेनर्स आके हमारे टीचर्स को कहते हैं कि योर ज्यूरिसप्रूडेंस इज इंस्ट्रक्टिव, ये इसमें सिर्फ हुक्म है, डूज एंड डोंट्स है, ये करो ये मत करो। टीच योर चिल्ड्रन टू चैलेंज, ये हमारे बच्चों को हम सिखाएं चैलेंज करने को। हाँ, जिनके पास ना कुरान का इल्म ना हदीस का इल्म, तो मेरे दोस्तों ये हर्डल्स हैं, ये ऑब्स्टेकल्स हैं विच वी टेंड टू क्रिएट फॉर अवरसेल्व्स ऑन द पाथ ऑफ अल्लाह ओबीडियंस। इताअत खुदा की राह में हम इन दुश्वारियों को अपने खुद के लिए पैदा करते हैं। तो तक्वा इलाही मेरे दोस्तों वो शय है कि जिसकी वजह से शैतान जो है दूर रहता है हमारे दिलों से। हुक्म इलाही ये है कि अपने दिलों के अंदर तक्वा रखो, यानी अपने दिलों को जो है तुम गॉड कॉन्शियस बनाओ, गॉड वेरी बनाओ, खुदा का पासो लिहाज अगर तुम्हारे दिलों के अंदर होगा तो शैतान तुम्हारे दिलों को मस्कन बनाकर तुम्हें गाफिल नहीं कर देगा खुदा से, तुम्हारी जिम्मेदारियों से और आखिरत से। और मेरे दोस्तों यही तो वो तकवा है कि जिसके लिए मोहम्मद और आले मोहम्मद ने अपनी जानें दे दी है, या नहीं? मोहम्मद और आले मोहम्मद, आप उनके खुतबों को स्टडी कीजिए, अमीरुल मोमिनीन के खुतबों को देखें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खुतबों को देखें, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खुतबों को देखें, उनके अंदर जिक्र आ रहा है तकवा का। तकवा इख्तियार करो, तकवा इख्तियार करो। करबला में दो गिरोह था मुसलमानों का, आपस में जो एक दूसरे के मुकाबले में आए, फ़र्क उनमें यह था कि जो इमाम के साथ आए, मैं कहता हूँ ये महज शुहदाए करबला नहीं बल्कि मुत्तकीन करबला थे, ये मुत्तकीन करबला थे। और सामने जो आए थे हज़ारों की तादाद में, यहाँ सिर्फ 72 थे, वहाँ हज़ारों की तादाद में जो आए वो थे कि जिनके दिलों को शैतान ने अपना मस्कन बनाया हुआ था। इसीलिए शरीयत की कोई बात उनके दिमाग में उतर नहीं रही थी, इसीलिए हुसैन को पहचानने से उन्होंने इनकार किया, इसीलिए इंतकाम बद्र का और अहद का लेने के लिए करबला आए। अरबाब आज़ा इमाम के 72 साथी थे, लेकिन कैसे साथी थे? बड़े तो बड़े, लेकिन बच्चे भी इनमें ऐसे थे जो शौक़ शहादत में मचलते थे, तड़पते थे। दुनिया के बच्चे खिलौने के लिए लड़ते हैं, इस घराने के बच्चे वो हैं जो शौके शहादत में तड़पते थे। शबे आशूर इमाम महजरे शहादत सुना रहे थे, हर एक का नाम आया, हबीब का नाम आया, ज़ुहैर क़ैन का नाम आया, बुरैर का नाम आया, अकबर का नाम आया, औन मोहम्मद का नाम आया, एक 13 बरस का यतीम हसन कासिम का नाम नहीं आया। बच्चा एक मर्तबा घबरा गया, खड़ा हो गया, कहा चचा जान क्या महजर शहादत में मेरा नाम नहीं है? मौला ने अपने भतीजे को नज़दीक बुलाया, कहा बेटा कासिम ज़रा नज़दीक आओ, ज़रा करीब आओ। कासिम करीब आए, मौला ने कहा बेटा कासिम ज़रा ये तो बताओ मौत तुम्हारे नज़दीक कैसी है? कहा चचा जान अहला मिन अलअसल, शहद से ज़्यादा शीरीन। बस ये सुनना था, एक मरतबा मौला ने अपने भतीजे को सीने से लगा लिया, ज़ारो कतार रोए। कहा बेटा कासिम महज़र शहादत में तो तुम्हारा भी नाम है, लेकिन मैंने सुनाना मुनासिब नहीं समझा था, वरना बेटा कासिम महज़र शहादत में तो तुम्हारे छोटे भाई अली असगर का भी नाम है। सुनते ही एक मर्तबा कासिम तरब गए, पूछा चचा जान कि आशकियाँ खैमे में आ जाएंगे? मौला ने फरमाया नहीं बेटा कासिम, मैं खुद असगर को मैदान में पानी पिलाने के लिए ले जाऊंगा, जहां ये मेरा बच्चा तेरे जुल्म का निशाना बनाया जाए।

बैठने के बाद हद्दअकल एक कदम भी सरकार सैयदुश्शुहदा से नज़दीक नहीं हुए तो हमें सोचना चाहिए कि हमने फर्श एजाज से हासिल किया क्या, क्या हमको मिला इस फर्श एजाज से, कुछ तो हम एक कदम आगे बढ़े। लिहाजा ये सारी चीज़ें हैं ही इसीलिए कि हम साथ में आगे बढ़ें। तो अय्याम अज़ा, मुहर्रम, ये माहौल, ये सारी चीज़ें कि हम सरकार सैयदुश्शुहदा से इतना नज़दीक हो सकें कि अगर आशूरे में सरकार सैयदुश्शुहदा के साथ हों तो जान को खर्च करने में, अल्लाह की राह में अपनी जान को दे देने में, नफ्स को खर्च करने में हम ज़रा सा कोताही ना करें, आमादगी रखें। इन सारी चीज़ों के साथ इसकी इब्तिदा होती है इंसान की नीयत से, और आज के ज़माने में जिस्म का साथ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नीयत का साथ है। नीयत अगर सच्ची होगी, छोटी सी मिसाल दें, और चूंकि कई पॉइंट है लिहाजा तेज़ी से अपने बात को पॉइंट टू पॉइंट पेश करेंगे, छोटी सी मिसाल दें ताकि ये बात वाज़ हो। खूब एक इंसान नमाज पढ़ना चाहता है, इरादा किया उसने, खूब ये इरादा ही नीयत है। अब वो इस इरादे के बाद वो आया, उसने बाकायदा वुजू किया, सब कुछ किया, फिर मुसल्ले पे गया, और जो प्रॉपर नीयत है, जो इरादा है किया, नमाज को शुरू किया, तो इसकी नमाज है। लेकिन एक इंसान, उसने इरादा किया कि नमाज पढ़ना है, लेकिन खाने में लगा है, बाजार में लगा है, कारोबार, इरादा है उसके जहन में, मकसद है, सब कुछ है, लेकिन दूसरी चीज़ों से फुर्सत नहीं मिल पा रही है कि मुसल्ले तक पहुंच पाए। यानी वो चीज़ें कि जो मुसल्ले तक जाने के लिए ज़रूरी हैं, शरायत हैं, रिक्वायरमेंट हैं, उन पर अमल नहीं करना। आया इसकी ये नीयत काफ़ी है? सही मानों में देखा जाए तो ये नीयत उसकी या सच्ची नहीं है या मजबूत नहीं है। अगर नीयत सच्ची और मजबूत होती तो उसको मुसल्ले तक ले आती, फिर मुसल्ले से दूर नहीं होता। सरकार सैयदुश्शुहदा के साथ होने की नीयत हमारी सच्ची और अगर मजबूत होगी तो हम तेजी से उन चीजों को जमा करेंगे जो सरकार सैयदुश्शुहदा के साथ खड़े होने के शराइत हैं। जैसे वो नमाजी, जैसे ही उसने नियत की कि नमाज पढ़ना है, फौरन जाएगा वुजू करेगा, फौरन जाएगा मुसल्ले पे, ऐसे ही ये देखेगा कि सरकार सैयदुश्शुहदा के साथ जाने के लिए क्या शर्तें, अपनी जान को खर्च करने का इरादा हो, अल्लाह से नफ्स की मुलाकात का इरादा हो। ये सरकार सैयदुश्शुहदा के साथ चलने के लिए जो शर्त है वो शर्त है। ये जुमले में जैसा कि अर्ज़ किया कि मशहूर जुमला है, सरकार सैयदुश्शुहदा के साथ जाने में, इमाम के साथ जाने में, जैसे ही इंसान अपने नफ्स को खर्च कर रहा है, अब अगर उसके जहन में है ऐसा हुआ था, फिर ये होगा, मुस्तकबिल में हमको ये करना है, लौट के, इसका मतलब कि दुनिया का असीर है। अभी हमारा ये इरादा है, अभी हमको ये चाहिए, अभी हमारी ख्वाहिश ये है, अभी हमारी तमन्ना ये है, दरवाकई ये मुहाजिर इल्लाह नहीं है। इससे पहले किसी मजलिस में इस बात पर वजाहत की कि अल्लाह की तरफ हिजरत दरवाक़े नफ्स की हिजरत होती है, जिस्म की हिजरत तो नहीं, इस पर बाकायदा हमने गुफ्तगू की। ये अल्लाह की तरफ हिजरत करने वाला नहीं है, क्यों? इसलिए कि वो चीज़ें कि जो अल्लाह से रुकती हैं, इसमें फंसा हुआ है, मुश्किलात में फंसा हुआ है। मुसल्ले पे जाने वाला, इसके जिस्म पे नजासत लगी थी, अभी नजासत को उसने पाक ही नहीं किया, लिहाजा अगर ज़ाहरी एतबार से वुजू भी कर लेगा और मुसल्ले पे पहुंच भी जाएगा तब भी नमाजी नहीं बन सकता वो। क्यों? जो चीज़ें रुकावट हैं, जो चीज़ें मवाने हैं, उनको पहले दूर करना होगा। या जो इंसान दूसरी बहुत सारी चीज़ों में उलझा हुआ है कि जो रुकावट बनती हैं, जो लोग सरकार सैयदुश्शुहदा के साथ आए उन्होंने सबसे पहले दुनिया को तर्क किया। तर्क दुनिया पे बात हो चुकी, दुनिया को तर्क करने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि इंसान दुनिया को इस्तेमाल ना करे। दुनिया के तर्क करने का मतलब ये है कि इंसान दुनिया को मकसद ना बनाए जिंदगी का। हो सकता है कि एक इंसान दुनिया को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हो लेकिन मकसद ना हो उसका, वो तारिक दुनिया है ना, ऐसे वाकयात हैं और मिसालें भी हैं। हो सकता है कि एक इंसान के पास थोड़ी सी दुनिया है लेकिन उसने उसी को मकसद बना लिया है, तारिक दुनिया नहीं है वो। ये इंसान के अपने इरादे पे है, अपनी प्रोग्रामिंग पे है। लिहाजा
جب تک ہم اپنے نفس کو خرچ کرنے اور لقائے پروردگار کے مقصد سے آگے نہیں بڑھے اس وقت سرکار سید الشہداء کے ساتھ

बात नहीं हो सकते। तारीख उठा के देखिए कितने ऐसे लोग थे कि जो सरकार शहीद शोदा के अतराफ में थे, नजदीक में थे, लेकिन वो आपके साथ मदीने से नहीं जा पाए। हर हर मरहले पे लोगों ने छोड़ा है, ऐसा नहीं। मदीने से जितने लोगों को साथ जाना चाहिए था नहीं गए, मक्के से इतने सारे लोग, हाजी छोटी बात तो नहीं है ना, इतने पैसे खर्च करता है, अपने वतन को इतने दिन के लिए तर्क करता है, मुसीबतों को सहूबतों को बर्दाश्त करता है, तब कहीं जाके हज के लिए आता है, वहाँ पे आके सारे अरकान को एकदम शरीयत के मुताबिक अंजाम देता है, लेकिन इतना सब

का होने के बावजूद, दीन का दर्द होने के बावजूद, दीन के लिए कदम बढ़ाने के बावजूद सहकार सईदुश्शुहदा के साथ नहीं जा पाया, फलियरहल माना की मंजिल में नहीं आ पाया। क्यों? इसलिए कि कोई ना कोई चीज उसको रोके हुए थी। इंशाल्लाह अगर वहां तक गुफ्तगू पहुंची तो हम आपके सामने अर्ज करेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं कि जो इंसान को रोकती है। लिहाजा ये इस मकाम पे हम पहुंच गए कि एक चीज वो है कि जो दुनिया की तमन्ना है, दुनिया की ख्वाहिश है, दुनिया का मकसद है, और एक चीज वो है कि जो मसलन सरकार सईदुश्शुहदा अल्लाह लिल्लाहियत, ये सारी चीजें मकसद है। अलैकुम सलाम। ये नहीं हो सकता कि दोनों चीजें एक साथ हों, ये मुमकिन नहीं है। कुरान मजीद सूरह अहज़ाब आयत नंबर 4, इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैन फ़ी जौफिह, और अल्लाह ने किसी मर्द के सीने में दो दिल करार नहीं दिए। दिल एक ही, एक दिल में एक ही चीज हो सकती है। लिहाजा आप देखें कि जिनके दिलों में दो चीजें थीं, वाकई वो हमारा वहम होता है। कभी कभी लगता है ना कि भी ठीक है, हालात ऐसे हैं, इनको भी लेके चलते हैं, उनको भी लेके चलते हैं, मसला नहीं, मुश्किल नहीं, ये धोखा है। जैसे ही दिल में बातिल दाखिल हुआ, इंसान का वहम होता है कि हक है, हक खुद ब खुद निकल जाता है, बाकी नहीं रहता। कूफे में जिन लोगों के दिल में सरकार सईदुश्शुहदा के साथ साथ दुनिया की मोहब्बत भी थी, जैसे ही इब्ने ज़ियाद ने आके फरमान जारी किया, उन्होंने मुस्लिम नकील को छोड़ दिया। यह जिस मौके का जुमला है, जिनके दिलों में जरा सा भी किसी भी चीज का लगाव मौजूद था, वो मदीने से ही सरकार सईदुश्शुहदा के साथ नहीं निकल पाए। एक ही दिल था, दो दिल थोड़ी थे, धोखे में थे वो, किस दिल में दोनों चीजें नहीं होती, एक नियाम में एक ही तलवार होती है, अब दो तलवार को रखेंगे तो जाएगी नहीं। एक दिल में एक ही चीज होती है, दो चीज नहीं होती है। दो चीजों का मतलब कि इंसान अपने नफ्स को धोखा दे रहा है। ये स्टेप होते हैं शैतान के कि आहिस्ता आहिस्ता हक से दूर करें। लिहाजा ये लोग फलियरहल माना में नहीं आए, इमाम के साथ नहीं जा पाए। दरवाक़े इमाम का जो हमारा साथ है वो जिस्म का साथ नहीं है, रूह का साथ है, और इसीलिए ये साथ सिर्फ उस जमाने वालों के लिए महदूद नहीं है, हर जमाने वाला इमाम के साथ हो सकता है। रूह अगर इमाम के साथ हो जाए तो साथ में हो जाएगा, उसके लिए रूह की खासियत। और यह बात बारह हमने आज की है, लिहाजा वजाहत की जरूरत नहीं है कि असल इंसान जिस्म नहीं है, असल इंसान रूह है, इंसान का नफ्स है असल। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारी रूह किस मकाम पे है। आलम इस्लाम की एक अजीम शख्सियत आयतुल्ला शहीद मुर्तज़ा मुतहरी, इस रूह के मुतालिक कि मसलन किस तरीके से सरकार सईदुश्शुहदा के साथ ये रूह बुलंद हो, एक बहुत खूबसूरत सी बात पेश करते हैं, उसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया, हम आपके सामने पेश करते हैं। लेकिन उनकी इस बात को पेश करने के लिए मुकदमतन यह बात अर्ज कर दें कि एक रूह होती है जो बुलंद होती है, और एक उसको बड़ी रूह के हिसाब से उन्होंने ताबीर किया, एक होती है जो पस्त होती है, उसको उन्होंने छोटी के हिसाब से ताबीर किया। हम लोग बुलंद और पस्त के हिसाब से बात कर लेते हैं। बुलंद का मतलब जो बुलंद रूह वाले हैं वो सब के सब अइमा की कैटेगरी में आएंगे। ये और बात है कि रूह की बुलंदी उतनी नहीं है जितनी इमाम हुसैन की थी। इमाम हुसैन की जितनी रूह बुलंद उतनी थोड़ी होगी किसी की, कैटेगरी वही होगी, है ना। जैसे इससे पहले किसी मौके में मिसाल दी कि इमाम भी जब नमाज पढ़ते हैं तो नमाजी कहलाते हैं, हम भी जब नमाज पढ़ते हैं तो नमाजी ही कहलाते हैं, लेकिन हमारी नमाज इमाम की नमाज में जमीन आसमान का फर्क है। लफ्ज दोनों के लिए एक इस्तेमाल होगा, लेकिन नमाजी एक जैसे नहीं होंगे, दोनों के नमाजी होने में बहुत बड़ा फर्क है। लिहाजा रूह जब अल्लाह की तरफ सफर तय करती है, अल्लाह की तरफ हिजरत करती है, बुलंदी की तरफ चलती है, तो यह बुजुर्ग रूह होती है, बुलंद रूह होती है, बड़ी रूह होती है, पाकीजा रूह होती है, यह अइमा की कैटेगरी में आती है।

आगे बढ़ रहे, तभी तो साथ चल पाए। हल माना, पहचाने उसको। मसला ये नहीं है कि एक लम्हे में बस मर गया उस वक्त, नहीं, ये सारी मशक्कतों से गुजरना होगा। अगर इनमें से कोई भी चीज ऐसी है कि जो दिल में जगह रखती है और जिसकी दिल में मोहब्बत है, तो फिर वही मसला है कि एक सीने में दो दिल नहीं है, एक ही दिल है। अगर इसकी मोहब्बत है तो सरकार सईदुल शुहदा की मोहब्बत नहीं आ सकती, अल्लाह की मोहब्बत नहीं आ सकती, ये मोहब्बत निकालनी पड़ेगी। और जिनके दिलों में हुब्बे दुनिया थी, हुब्बे नफ्स था, वो नहीं जा पाए। ना नहीं कि नहीं जा पाए, कूफे में जनाब मुस्लिम के पास होके भी उनके साथ नहीं खड़े हो पाए। क्यों? इसलिए कि दुनिया की मोहब्बत थी। अभी दुनिया की मोहब्बत एक बहुत ही कुल्ली चीज होती है, लिहाजा जब बात कही जाती है तो हर आदमी सबसे पहले अपने को अलग करता है। नहीं, हर वो चीज की जो हमको अल्लाह से दूर करे, वो सब के सब दुनिया की मोहब्बत है, नफ्स की मोहब्बत है। ये अलग अलग शक्लों में आती है, कभी शोहरत की शक्ल में आती है, कभी माल और दौलत की शक्ल में आती है, कभी ऐशो इशरत की शक्ल में आती है, कभी लज्जतों के शक्ल में आती है, कभी रिश्तेदारी के शक्ल में आती है, कभी दोस्ती के शक्ल में आती है, कभी मकाम और मनसब और ओहदे के शक्ल में आती है। दुनिया का मतलब ये थोड़ी है कि मसलन किसी को बहुत बड़ा सरमाया मिल जाए, बहुत बड़ी जागीर, सिर्फ वही नहीं है। तो हर आदमी के अपने एतबार से दुनिया का अलग अलग मफहूम है और अलग अलग उसका मिज़दाक है। नफ्स की मोहब्बत यानी अपने इस जाहिरी वजूद से मोहब्बत की, नहीं इसको बाकी, इसमें कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। इन रुकावटों के साथ फिर सरकार सईदुश्शुहदा के साथ सफर नहीं हो सकता। अय्याम ऐसा है ही वो दिन कि जिसमें हमको सरकार सईदुश्शुहदा के साथ सफर करना है। सवा दो महीने मजलिसें भी हम कर रहे हैं, गिरिया भी कर रहे हैं, आंसू भी बहा रहे हैं, सरकार सईदुश्शुहदा का जिक्र भी हो रहा है, जुलूस भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इन सब के साथ फल यरहल माना में ना हो तो अजीब बात है ना, क्वेश्चन मार्क। सब कुछ कर रहे हैं लेकिन आपके साथ नहीं, साथ नहीं चल रहे। ये साथ चलने के शरायत हैं, इन शरायत के साथ। लिहाजा ज़ियारत आशूरा का मशहूर जुमला है, अस्सलामु अलैका व अलल अरवाह अल्लती हलत बिफिनाइक, याद होगा ना, ए अबा अब्दुल्लाह आप पर सलाम और उन रूहों पे सलाम की जो आपके आस्तानों में उतरी हुई। आज के इस जमाने में इंसान की मेराज इसी में है कि वो अपनी रूह को सरकार सईदुश्शुहदा की रूह से मुत्तसिल करते। इंसान का कमाल इसी में, जिंदगी का महसल इसी में। अलबत्ता फिर इसकी वजाहत कर दें कि ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें हमको दुनिया का तारीख दुनिया छोड़ नहीं, तारीख की दुनिया नहीं बनाती है। इंसान सब कुछ, मकसद इंसान का एक मंजिल तक पहुंचना है, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते में इंसान जो सवारी उसका भी इंतजाम करता है, खाता है, पीता है, सारी जरूरियात की चीजें। ये सारी चीजें लेने का मतलब ही नहीं कि मकसद है। आप चले गाड़ी से चार लोग सफर के लिए, लंबा सफर है, रास्ते में कहा भाई साहब खाने का टाइम हो गया, रुको, मकसद थोड़ी हमें खाना खाना, हमें सफर पे पहुंचना है। आप तसव्वुर कीजिएगा लंबा सफर है तो वहां पहुंचते पहुंचते उतरने के लायक भी नहीं बचेगा इंसान। तो ये सारी चीजें जरूरियात में है, मकसद नहीं है। मकसद होना अलग है, जरूरियात का होना अलग है। अगर मकसद में दुनिया शामिल है तो इंसान फिर सरकार सईदुश्शुहदा के साथ नहीं चल सकता है। लेकिन अगर मकसद में दुनिया नहीं है और बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह, लिहाजा जो मशहूर जुमला है और बारह हमने भी आपकी खिदमत में पेश किया, सरकार सईदुश्शुहदा ने खुद इस बात का तरह से शिकवा किया है। इमाम फरमाते हैं नास व अबीद दुनिया, लोग दुनिया के गुलाम हैं। व दीन लायकुन अला अलसनते, अगर दुनिया दिल में है तुम्हारे तो फिर तीन तुम्हारा दीन सिर्फ जबान तक है। सीने में एक ही दिल तो है ना, दो तो नहीं है। अगर दुनिया उसमें आ गई तो दीन नहीं है। अन्नास व अबीद दुनिया, लोग दुनिया के
गुलाम है।

0: हर पानी पी के रोता तोड़ रहे हो?
1: क्या हम सफर में नहीं है?
2: तुम्हारा बस यही काम है।

0: मैं सोच भी नहीं सकता था कि हम इतनी आसानी से यहां तक जान बचाकर पहुंच जाएंगे।
1: अहमद का दिमाग भी खूब काम करता है, लगता है कि मुद्दतों अमरयास के साथ काम किया है।
2: इस बात उस फासिक से ना दो, मेरा खून खौल जाता है।
3: अच्छा। रशीद ने क्या नाम बताया था उस शख्स का, उस मारने वाले का?
0: बरक।
3: हाँ, बरक ने बताया था कि ख्वारिज ने हमारे आस को मार डाला।
2: मैं नहीं समझता, वो बहुत मक्कार है। दुनिया में किसी माँ ने ऐसा बेटा पैदा नहीं किया होगा, न जाने कितनी बार अपनी जान बचा चुका है। बहादुरी से नहीं बल्कि मकर व फरेब से।
3: पता है सिफिन में जुल्फ़िकार अली की इज्जत में आ गया था? जानते हो जान के डर से क्या किया था? नंगा हो गया था, अली ने शर्मगाह की वजह से उसको छोड़ दिया।
2: यहाँ तुमको शर्मगाह की वजह से माफ किया। उठो अब चलते हैं।
0: नहीं ठहरो, सवार आ रहा है।
2: किधर से?
0: इस तरफ से।

0: रुक जाओ,
1: कहां से आ रहे हो? कूफे से।
2: कूफे से? मगर जा कहां रहे हो?
1: अमीरुल मोमिनीन माविया के पास।
2: अमीरुल मोमिनीन, फिर तो कोई खास खबर लेके जा रहे हो।
1: तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो?
3: डरो नहीं, हमारा कोई गलत इरादा नहीं है।
2: जानते हो, जिस तेजी से तुम सफर कर रहे हो, आधे दिन में दमिश्क पहुंच जाओगे। हम तुम्हारी मुश्किलात को कम करना चाहते हैं।
1: रास्ता छोड़ो, वरना जान लो कि तुम्हारा वास्ता अमीरुल मोमिनीन के सिपाहियों से पड़ा है।
2: हमने तो कोई बुरी बात नहीं कही। तुम वो पैगाम हमको दे दो और कूफे पलट जाओ, हम उसे अमीर तक पहुंचा देंगे।
1: मुझसे क्या चाहते हो?
2: हमें उस पैगाम के बारे में मालूम करना है।
1: नहीं बता सकता, दूर हट जाओ।
2: अभी बताओगे?
1: मुझे छोड़ो, मुझसे क्या चाहते हो? अच्छा ठहरो, ठहरो, बताता हूँ।
2: तूने वो पैगाम कहाँ छुपा रखा है?
4: उधर देखो, सवार आ रहे हैं।
5: हमें यहां से निकल जाना चाहिए।
6: आए! आए! आए!
1: देखो इनको पकड़ो, ये अमीरुल मोमिनीन के दुश्मन हैं जो भाग रहे हैं।

0: ये हमारे आज के फौजी लगते हैं।
1: सच कह रहे हो, मिस्रियों का लिबास पहने हैं।
2: हिंदा के बेटे की क्या आरजू है, पूरी जमीन पर हुकूमत कायम करना चाहता है।
0: लगता है इस बार वो अली के कत्लों को बहाना बना के लोगों का खून बहाना चाहता है।
1: मैं समझता हूँ जितना जल्दी मुमकिन हो वो सब लोगों को उसकी तरफ खींचना चाहता है।
0: कोई बड़ा फितना उठने वाला है, इसकी खबर इब्ने अब्बास को देना बहुत जरूरी है। जल्दी चलो, वक्त कम है। रुको।
1: क्यों रुक गए हो?

0: क्या सोच रहे हो? लगता है हमारे आस के नाम से कोई नया बहाना दिमाग में आ गया है। मजाक मत करो।
1: बेहतर है कि हम में से सिर्फ दो आदमी कूफे जाएं और एक आदमी यहीं रुक के ताज़ा खबरें मालूम करे और इस रास्ते पे आने जाने वालों पे नज़र भी रखे। वैसे तो हम लोग एक दूसरे से रابطہ रखेंगे, इस बारे में तुम लोग क्या कहते हो?
0: मैं समझता हूँ खबर ले जाने के लिए दो आदमी काफी हैं।
2: नहीं, एक आदमी काफी है। तुम लोग यहीं रहो, मैं कूफे जाके खबर पहुंचाता हूँ।
1: तुम क्यों जाओगे?
3: अहमद,
1: तुम चुप रहो।
2: मैं अपने वालिद के साथ आज से 4 साल पहले सरजमीन ईरान से मौला अली से मुलाकात के लिए निकला, लेकिन उन तक न पहुंच सका।
1: हमारा इससे क्या रब्त है?
3: अहमद,
1: तुम चुप रहो।
2: रास्ते में मेरे बाप का इंतकाल हो गया। डाकुओं ने हमारे काफिले पर हमला कर दिया और मुझे असीर कर लिया।
1: हमने तो तुम्हें कैद नहीं किया। तुम चुप रहो।
2: मुझे गुलाम बनाकर बेच दिया। मैं फरार कर गया। मैं दोबारा असीर हुआ और अब मैं उस वक्त पहुंचा हूं कि जब अली मुर्तजा दुनिया में नहीं है। मैं उनकी ज़ियारत से महरूम हो गया, लेकिन अभी तक उनकी ज़ियारत का शौक मेरे दिल में वैसे ही जोश मार रहा है।
1: हम भी तुम्हारी तरह ज़ारत के मुश्ताक।
2: अब तुम मुझे इजाज़त दो ताकि मैं जल्दी से कूफे पहुंच सकूं। अगरचे मैं मौला अली की ज़ियारत से महरूम हो गया हूं, लेकिन कम से कम इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कर सकूं।
1: मैं इस बात की इजाजत नहीं देता।
3: अहमद,
1: तुम चुप रहो। क्यों तुम जाओगे? क्या हम और साले उनके चाहने वालों में से नहीं हैं? हम भी उनकी ज़ियारत करना चाहते हैं।
4: तो तुम भी चलो।
1: कब? हम तो अभी जाएंगे।
3: अहमद,
1: मैं खुद जा रहा हूं। तुम घोड़े से उतरो। जाओ जल्दी कूफे जाओ।
5: अच्छा, मैं जाऊं?
1: हाँ जाओ।
6: खुदा हाफिज़।
7: खुदा हाफिज़।
1: फिर से धोखा खा गए ना?
2: तुम बिल्कुल हमारे आज जैसे लग रहे हो। हे, चलो।
1: हर दोबारा मेरे जाल में फंसोगे तो बताऊंगा।
2: नहीं फंसूंगा।

0: Ça longtemps.
1: बताओ तुम किसका पैगाम आप ये तक ले जा रहे हो?
2: तो खुदा की कसम मुझे मजबूर ना करें, मैं नहीं बता सकता।
1: कहता है नहीं बता सकता, ठीक है जाओ दफा हो जाओ। जरा ठहरो, अगर मैं चाहता तो सारी बात तुम्हारी जबान से उगलवा सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता।

इसलिए कि माविया मुझे हर बात खुद ही बता देगा। तुम्हारे पैगाम की क्या हैसियत, वो तो मुझे यहां तक बता देगा कि बैतुल खला कितनी दफा गया। जाओ जाकर माविया से कह दो कि अमरयास आ चुका है, बिल्कुल सही और सालिम, न उसे खवारिज मार सकते हैं और ना ही उसे अली की ज़ुल्फ़िकार। जाकर कह देना कि अमरयास ने कहा है कि जब तक तुम सबकी नमाज मैयत न पढ़ा ले।

0: नहीं भाई, मेरा ऊँट तो उससे भी ज्यादा तंदुरुस्त था। नहीं देखा शायद तुम लोगों ने।
1: भाई इब्न अब्बास कहाँ होंगे?
0: वहाँ घोड़े को यहीं छोड़ दो, मैं उसका ख्याल रखता हूँ। हाँ बताओ, क्या कह रहे थे?
2: सलाम।

0: درع عبد الله.
1: سلام.
0: سلام عليكم قليل.
2: إنا بتاعه. भाई, इनमें से इब्न अब्बास कौन है?
3: कोई नहीं, मेरे साथ आओ।
0: कैस तुम बांटते ना, अच्छी बात है, करीब हो जाओ। अब मैं सबके नाम पुकारूंगा। इस्माइल इब्न हदी, ये लो तुम्हारा खत, जाओ। काजिम इब्न अब्दुल्ला, ये लो जाओ। राशिद इब्ने औस, ये तुम्हारा नामा और इब्ने अब्बास का पैगाम दे देना।
4: सलाम अलैक।
0: अलैकुम सलाम। अगर मुझसे कुछ काम है तो बताओ।
4: मैं उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास के लिए पैगाम लाया हूँ।
0: उबैदुल्लाह मैं खुद हूँ।
4: मैं शाम से हारिस का कासिद बन के आया हूँ।
0: हारिस?
4: हारिस ने आपके नाम पैगाम भेजा है।
0: हाँ, हारिस का क्या हाल है? एक मुद्दत से उन्हें नहीं देखा है।
4: ठीक नहीं है, मौला अली के फिराक में रोते रहते हैं।
0: सब रो रहे हैं और वो सबसे ज्यादा, इसमें कोई शक नहीं। वो अली के बावफा दोस्तों में से हैं, उन्हें इश्क अली था।
4: इसी तरह उनकी औलाद भी आशिक अली है।
0: तुमने कहा पैगाम लाए हो।
4: इजाजत दीजिए, मैं तन्हाई में आपको बताऊंगा।
0: आओ मेरे साथ। ये लो तुम्हारा, आओ।
5: अमीर, अमरास ने मुझसे कहा है कि आपको बता दूं कि उबैदुल्लाह के बाद कैस इब्न साद ने भी हसन इब्न अली की बैत कर ली है।
2: या अमीर, अली ने उसको इराकी लश्कर का सिपहसालार बनाया था।
5: उसने कहा, यह भी अर्ज कर दूं कि कैस ने नारा लगा के कहा कि दुश्मन ने किताब खुदा और सुन्नत रसूल और मुनाफिकीन से जंग के लिए आपकी बैत करता हूँ, मगर हसन इब्न अली ने कहा कि

0: ताबे खुदा और सुन्नत रसूल की पैरवी काफ़ी है और हर चीज़ इन दो में मौजूद है। इसके बाद कैस ने गर्मजोशी से बेयत कर ली।
1: अम्र से कहो इसके बाद वो मुझे लिखा करे,
0: अमीर डरता है कहीं किसी के हाथ ना लग जाए।
1: वो मुझे लिखा करे।
0: इताअत। अम्र ने कहा, यह भी बता दूं कि बहुत से गुरुओं ने अबा मोहम्मद की बेयत में जल्दी की है, यहां तक कि वो लोग भी जो अली के दुश्मन थे।
1: खवारिज
0: हाँ, खवारिज और बुजुर्गान गिरोह की शक्ल में हसन इब्न अली के पास आए। वो सब शाम के साथ जंग चाहते थे। और फिर अमर आस ने शिम अशअस और इब्न उमैर के साथ मुलाकात की और इनको हसन इब्न अली की बेअत से रोका, मगर वो नहीं माने और कहा, हमारी हसन इब्न अली की बेअत के लिए सिर्फ एक शर्त थी और वो शर्त ये थी कि शाम के साथ जंग की जाए।
2: शाम के साथ जंग, और हसन इब्न अली ने कबूल किया।
0: और अमर आस ने कहा, यह भी बता दूं कि फिर हसन इब्न अली ने इनसे कहा, नहीं बल्कि मुकम्मल इताअत और पैरवी होनी चाहिए, चाहे जंग हो कि अमन। और हाँ, एक और बात, और वो ये कि दमिश्क पहुंचने से पहले बाद जोहर तीन लोगों ने मुझ पर हमला किया ताकि इस पैगाम के बारे में जान सकें जो मैं ला रहा था।
1: तो बताया तुमने?
0: नहीं अमीर, अगर वो मेरे बदन के टुकड़े टुकड़े भी कर देते तो भी मैं जबान नहीं खुलता। और हाँ, एक और पैगाम, अमरे आस ने कहा, आपको ये भी बता दूं कि
1: अम्ब्रयास को देखा कहाँ?
0: उसके आदमी मुझे उसके पास ले गए थे। वो शाम के रास्ते में है, बहुत जल्द यहाँ पहुंचने वाला है।
1: अम्ब्रयास, ए मक्कार और बेदीन लोमड़ी सिफत, फिर से जान बचा ले गया। कैसे अच्छे वक्त पे आ रहा है, ऐसा वक्त कि मैं कभी उसका इतना जरूरतमंद नहीं था। हाँ, कहा पैगाम लाए हो?
0: हाँ अमीर, उसने कहा कि आपको बता दूं कि जब तक आप सबको अपने हाथों से कब्रों में दफन ना कर दूं, इस दुनिया से नहीं जाऊंगा।
3: अमीर अल-मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद आपकी वसीयत के मुताबिक आपके फर्जंद अर्जुमंद हसन इब्न अली ने उमूर मुस्लिमीन की बागडोर संभाली। इमाम ने मसनद खिलाफत को उस वक्त संभाला कि इससे पहले कोई इन हालात से दोचार नहीं हुआ था, इसलिए कि आलम इस्लाम को हुकूमत शाम की जानिब से बहुत बड़ा ख़तरा लाहक था, जिसकी हुकूमत की बुनियाद झूठ, जुल्म और मक्कारी पर उस्तवार थी। हुकूमत शाम को इस्तेहकाम मिल चुका था और उसका फितना व फसाद हर जगह फैल रहा था। ज़ईफ़ ईमान, सियाह दिल और मुर्दा ज़मीर लोग और दीन व अकीदे में कमज़ोर अफराद उसके धोखे में आकर उसके गुरोह में दाखिल हो रहे थे। झूठ और फसाद का मरकज़ वसीतर और कवी से कवीतर हो रहा था। बहरहाल, जिस दिन कूफे ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हाथों बैअत की, वहाँ मौजूद तमाम लोगों में इत्तेफाक राय पाया गया जिसकी मिसाल इससे पहले नज़र नहीं आती। वो मिंबरे खिलाफत जो अपने मौलाओ आका के दुनिया से रहलत हो जाने पर गमजदा था, अब वो खुश नज़र आ रहा था, इसलिए कि अपनी आगोश में अंबिया की विरासत के मजहर को देख रहा था। उस ज़माने में हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम से ज़्यादा कोई आबिद व जाहिद नज़र नहीं आता था जिसमें तमाम नेक खसलतें जमा हों। यही वजह है कि फ़क़त उन्हीं की शख्सियत थी जिन पर मुख्तलिफ आरा और नज़रियात रखने वाले अपनी रज़ा व रग़बत से तस्लीम हुए और क़यादत की तमाम सिफ़ात आप में बदरजे अतम मौजूद थीं। बहुत से अफराद खुद परस्ती और मफाद परस्ती में इस हद तक आगे बढ़ गए थे कि ये उनके अकीदे का हिस्सा बन चुकी थी, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम जिनका अखलाक पैगंबर के आदात व अतवार और सिफात की याद ताज़ा करता था, ये अफराद उनकी बैत करके अपने घनाओने मकासद को हासिल करना चाहते थे। लेकिन हकीकत

0: मुझे मालूम है तुम मुझे अमीरुल मोमिनीन कह के अपने दिल में हंस रहे होंगे।
1: सच बताओ पिसर है मुसफियान, क्या तुम नहीं हंस रहे थे?
0: ऐ लोमड़ी सिफत, मेरी आरजू थी कि खवारिज की एक तलवार से तुम अपने अजदाद से जा मिलते।
1: ताज्जुब है, मेरी भी तुम्हारे लिए बिल्कुल यही आरजू थी।

0: सकते सर अबू सुफियान, सब कुछ ठीक है।
1: हाँ ठीक है।
0: यजीद, तुम्हारी शायरी कैसी चल रही है?
2: आजकल मैं शिकार कर रहा हूँ।
0: अच्छा, तो तुमने शिकार शुरू कर दिया है?

0: अलबत्ता शिकार और शायरी में भी अजीब रब्ता पाया जाता है। शिकार की खाल को शायर लिखने के लिए इस्तेमाल करता है और उसके गोश्त से हम जैसे फकीरों का पेट भरता
1: हर जैसे मक्कार से ताज्जुब है कि मेरे बेटे का मजाक ना उड़ाओ। कल को अगर वो मेरी जगह आ जाए तो तुम्हें जल्लाद के हवाले कर देगा।
0: नहीं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं, इसलिए कि मैं इस नौजवान शायर में हुक्मरानी के कोई आसार नहीं देखता।
1: तेरे मुंह में खाक हो बदबख्त।
0: मैं मुतमईन हूं कि तुम भी ऐसा ही सोचते हो।
1: अजीब है। उस हमलावर की वार से तुम कैसे बच गए?
0: बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम बचे हो।
1: अब कुछ देर आराम कर लो और फिर दरबार आ जाना, मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है।
0: तुमको हमेशा मेरी जरूरत रहेगी।
2: कहाँ है वो? आप बैठे हो, अभी आता है।
3: शेमर, अमर और हजार तुमसे मिलने आए हैं।
1: कहाँ?
3: उधर साय में बैठे हैं।
1: क्या कहते हैं? हाँ, कैसे आना?
2: तुमसे कुछ बात करनी है।
1: बताओ, मैं सुन रहा हूँ।
2: तुमने हसन इब्ने अली की बयात से मुतालिक शर्तें सुन ली, जंग और गैर जंग में पैरवी, क्या ख्याल है तुम्हारा?
1: उस शर्त पे कि हसन इब्ने अली माविया से जंग करे, बस।
2: हसन के हाथ बयात? लेकिन तुमने तो उनके बाप से जंग की है।
1: हमने माविया से भी जंग की है। हसन न अली है और न माविया जैसे।
2: धोखा ना दो शेमर, हसन वही है जो अली थे। उनसे तुम्हारी दुश्मनी उनके बाप की दुश्मनी से कम नहीं है।
1: हमारी मुआविया से दुश्मनी उससे 100 गुना ज्यादा है।
2: जानता हूँ तुम्हारी मुआविया के साथ दुश्मनी है, लेकिन मुआविया के पास दौलत के अलावा सरदारी की भी ताकत है।
0: इराक वाले मुआविया की सरदारी को नहीं मानेंगे।
2: वो माने या न माने, मुआविया तख्त सल्तनत पर है और बाकी रहेगा।
0: शायद वो शाम में हो न कि इराक में।
2: उसकी सरदारी शाम, यमन, मिस्र और जजीरे तक है। अशअस
1: नहीं सुना? अशअस ने क्या कहा? माविया उस वक्त यहाँ कदम रख सकता है कि जब हम यहाँ ना हो।
2: वो दिन ज्यादा दूर नहीं है।
1: बताता हूँ, माविया के कुत्तों।
2: मेहमानों का कत्ल? शेमर, हम यहाँ मशवरे के लिए आए हैं, ना झगड़ा करने के लिए। हम पर तलवार उठा रहे हो?
1: आ जाओ शेमर।
0: सुनो अम्र, बनू उमैया को इराक की सरदारी नसीब नहीं होगी, यहाँ तक के वो अली के शियों को भी अपने साथ मिला ले।
2: तुमसे कोई बात नहीं करनी आम्र, चलो चलते हैं।
4: हजार, मेरी बात सुनो।
2: नहीं, तुम सुनो। ये तुम ही थे कि सिफीन में खुफिया तौर पर मुआविया के हाथों बयात की, और जब कुरान नेज़ों पर उठाया गया तो लोगों को फर्जंद अबू तालिब के खिलाफ भड़काया। ये सच है, तुम ही लोगों ने तलवार इब्ने मुलजिम के हाथों में दी। खुदा की कसम, अगर तुम धोखेबाजी करोगे तो हम तुम्हारे साथ वही करेंगे जो कसाब ऊँटों के साथ करते हैं। अब जाओ और इस अहमक के कान में कह दो कि कजरवी इख्तियार न करे।
1: तुम मेरी बात सुनो, मैं 10,000 बहादुर जंगजू और इनसे भी खूंखार अफराद को अपने झंडे तले जमा करूंगा, और फिर हम सब हसन इब्ने अली के साथ मिलके तुम्हें और हिंदा की औलाद को नीस्त नाबूद कर डालेंगे। आगे।

0: चलो घर चलते हैं। हमें अबू सुफियान के बेटे को खत लिखना चाहिए, लिखना चाहिए कि अगर तख्त व ताज चाहिए तो हाथ पे हाथ रख के ना बैठे।
1: चलो चलते हैं।

0: हमें होशियार रहना चाहिए।
1: उधर सुनो क्या कह रहे हैं।
0: सुनो जमात, शाम से खबर आई है कि माविया लश्कर जमा कर रहा है और फितना बरपा करने का कस्त रखता है, और ये भी खबर है कि अमर आस मिस्री सिपाहियों समेत उससे मिल गया है। तुम लोग अबा मोहम्मद के कासिद अपने कबीले के सरदारों तक ये खबर पहुंचा दो, और साथ में ये हसन इब्न अली के खत ले जाएं और कहना फर्जंदे रसूल खुदा की तरफ अपने हाथ बढ़ाएं। जाओ, खुदा हाफिज। अब जाएं।
2: चलो चलते हैं।

0: सुनो शिम्र, मुआविया ने लश्कर तैयार कर लिया है और अमरास भी उससे मिल गया है, और हसनीद ने अली ने भी अपने कासिद हर जगह रवाना कर दिए हैं, और वो भी जंग की तैयारी के लिए फौज जमा कर रहे हैं।
1: चलो अच्छा है, अब आ मोहम्मद ने जंग की तैयारी शुरू कर दी है।
2: सुनो शिमर, अमरियाज जिंदा है और माविया से मिल गया है।
0: लगता है वो अहमक भी अपनी मामूरियत अंजाम नहीं दे पाया।
1: अच्छा है, मैंने भी अहद किया है कि सुफियान और आस के बेटों को मैं अपने इन्हीं हाथों से दो टुकड़े कर दूं। अगर वक्त आ गया तो मैं अली की तरह उसकी शर्मगाह को देख के शर्माऊंगा नहीं, चाहे वो हजारों कुरान नैजों पे लाएं और उसके तमाम अजदाद मेरे सामने नंगे होके नाचे। खुदा की कसम मैं सबकी गर्दनें उड़ा दूंगा।
2: मुझे इस बात पर तअज्जुब है कि जब किसी को अमर आस के बारे में खबर नहीं है तो अबा मोहम्मद कैसे और इतनी जल्दी सबसे पहले शाम के हालात से बाखबर हो गए
0: और फौरन अपने नुमाइंदों को कूफे के तरफ भेज दिया।
1: अच्छा, ये जवान मुझे पसंद है। मैं पहले से कहता था कि ये न अली है और न माविया जैसा इसका साथ दिया जा सकता है।